से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

वेलकम बैक फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुनदा सारे दा मता मता स्वागत है। मैं हां डोगरन सोल नेहा, ते अस गल करा दे डुगर प्रदेश दी। आहो जदों गल चलदी है डोगरी रेडियो ते, असीं डुगर प्रदेश दी के गल करनी है और कैदी गल करनी है। ते अस आखा दे भई अस रोज राजमा चोल नहीं खाने, साडा जिहड़ा कुजीन है डोगरे दा और बहुत सारी वैरायटी दा है। मैं फिर किसी एपीसोड च तुसीं और भी डिशां दा सी राजमा चोल दे बियॉन्ड साडा की कुजीन है। ते रही गल वैष्णो देवी दी, भाई जिन्ने भी लोग न जम्मू दे वो रोज नहीं जांदे वैष्णो देवी, ते और ते और जिन्ने की कटरे दे कोल रोंदे ने लोग कटरे वाले वो भी नहीं जांदे ने रोज। पर आखदे ना जिन्नी चीज दूर होंदी है उन्नी के प्यारी लगती है। ते इयां के मन ते बड़ा करदा है जाने दा, पर कुछ समय ये नहीं है। अस बैठे ने आ जम्मू दा बाहर दूर दराज, ते कोल वाले भी नहीं जा पाते ने, ते असीं कुत्थे जाना है। तो सुनो एक मिठा हरा गीत।

0: बुक्कल्चो यातां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
1: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
0: सांझा विरसा दी टीम नु 647-835-5294
2: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नु बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: ट्रक करा लिया जदों वेखो एदियां कमानियां ढिलियां रहिंदियां की करा
1: मैं सुनिया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
3: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
3: 905-459-5533
1: 905-459-5533
3: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

चूसर कदा खूबसूरत लोग खूबसूरत फ्रीक्वेंसी चलो डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राइट टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक सुन रहे हो उतने सामने तुम बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज यानी कि एम 530 डाल सुन रहे हो इस समय अगर ओंटेरियो दे विच सार्निया दे बॉर्डर तो लैके लंडन किचनर वाटरलो कैम्ब्रिज ब्रेंटफर्ड होंदे हुए हैमिल्टन ते नाइग्रा फॉल दे बॉर्डर तक इधर 401 दे उत्ते तुसी सानू वुडस्टॉक तो लैके लंडन किचनर वाटरलो कैम्ब्रिज होंदे हुए गोल्फ और मिल्टन ओंटेरियो जिथे सुन रहे हो उत्थे GTA इंटायर दे विच ते ईस्ट दे विच सानू तुसी जो ओशवा कर्टिस बॉमनवेल हैम्पटन क्रॉस करदे हुए न्यू टनविल तो लैके न्यू कैसल आ जांदा अगे एक शहर ते उस तो बाद तुसी जो सानू न्यूटनविल तो बाद बेलवल तक सुनते हैं कोबर क्रॉस कर जाने हो ते ईस्ट दे विच सानू तुसी नॉर्थ दे विच हाईवे 7 है टूवर्ड्स ओटावा जाने हो लिंजी पीटरब्रो क्रॉस कर जाने हो बड़ा सोहना जिहड़ा हैगा चैनल सुन सुन रहा हुंदा ते नॉर्थ दे विच तुसी सानू 400 सीरीज इंटायर जिहड़ा हैगा इहनू कवर करदे हां असीं जाने ओरेलिए तक ते दूसरे पासे ग्रैवनहस दे उत्ते सी 11 हाईवे दे उपर ते सानू तुसी नॉर्थ विच टोबरमरी तक सुन रहे हो यानी कि तकरीबन 1000 किलोमीटर दे रेडियस ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ विच सब तो वड्डा जिहड़ा हैगा कवरेज एरिया डिजिटल फ्रीकुएंसी राही एम 530 30 ईयर प्लस समा हो गया साउथ एशियन लोगों नू सर्व करदे हन आगाज़ उस हमेशा इस अपने शो दा उस परम पुरख परमेश्वर दे नाम उटासना जिस दे नाम उटासना आगाज़ दुनिया दी हर एक शायद उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा चढ़दी कला वाला निरपौ निर्वैर रहेगा मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी रोशनी रस्ते दिखाएगी तुसी चलते रहोगे ते अज दे शो दे विच जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटां दो ले ली तुहाड़ी टिकट टू कॉल इन स्टूडियो 905-600-7333 905-673-3337 ते तुसी सानू कॉल कर रहे हो 905-673-3337 ते तुसी साडे नाल गलबात कर रहे हो

0: Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600.
1: Hello bro, kithe hai tu?
2: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons ch baith jaiye.
1: Oh yaar, ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiya chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne, full privacy mildi hai. Free wifi, te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
2: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल होटल हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600
3: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
4: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
5: अरे महेश अभी तक ऑफिस

0: Visa Medical Insurance. Number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Chartered Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance.
1: A to Z Kitchen Cabinet, ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ A to Z Kitchen Cabinet 416-720-7073 905-720-7073 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
2: सर्विंग

मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, मेरी मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, वो मुझे चाहे जाना चाहे कोई जरूरी तो नहीं, ये कुछ सामने हो मेरी आंखों के, वो सामने हो मेरी आंखों के जरूरी तो नहीं, कम है कि बस है मेरी सांसों में बस।

0: मेरी सदा है तुम,
1: क्या था
0: तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तुम, मेरी पहली और आखिरी वफा है तुम। चाह है तुझे चाह से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तुम।

0: नहीं आया अभी, नहीं आया कैसे तुम्हारी गल, कमाल हो गई, वेरी सैड। मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, तुझे मांगा है तेरी वफा मांगी है। मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, तुझे मांगा है तेरी वफा मांगी है। जिसको देख कर दुनिया को रश्क आए, जिसको देख के दुनिया को रश्क आए, तेरे प्यार करने की मेरी जान, सिंह हरजीत ने क्या मांगी है। अगे तुम समझ गए होने, मैंने अगर दसन की लोड़ नहीं, बिकॉज यू आर लिसनिंग पंजाबी विरसा। लो जी, एक कॉल आई तो हैगी है, देखते हैं भी सह पता लग जाए किसी ने। हैलो,
1: हैलो, कैसे हो?
0: ठीक है सर, तुम सुनाओ।
1: लभ
0: लिया भरा साढ़े, बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, थैंक यू। साडा प्रोग्राम तद सुनना जे इंटरटेनमेंट बंदे आ, जे टेंशन फ्री होना फिर प्रोग्राम सुनना। सिंह हरजीत शो सुन रहे 11 दोबारा पंजाबी विरसा एवरीडे। भाजी 18 साल हो गए यार।

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
2: ए की गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए था?
3: क्या क्या रहा है यहाँ पर?
2: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
5: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
6: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
5: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
6: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
7: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
6: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
7: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
6: 416-509-1509
7: और visit insuranceforyou.ca।
8: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
9: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888।
8: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
10: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
11: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां।
12: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: जे तुसी भी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तां तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: मॉर्गेज दी दुनिया दे विच चमकदा सितारा प्रभदीप सिंह की ताड़ी मॉर्गेज रिन्यू होने वाली है तुसी प्राइवेट मॉर्गेज स्टक हो गए हो ते बद इंटरेस्टेड पे कर रहे हो ए ताड़ी मॉर्गेज बैंकां नाल करवा के लो इंटरेस्टेड ते गारंटी नाल करवाउणगे ते नाल दी नाल लाइन ऑफ क्रेडिट भी ताड़ी बनवा देणगे ते $3500 तुहानूं कैश वापस भी दित्ता जाएगा जां फिर बिजनेस लोन लैणा जां लाइन ऑफ क्रेडिट बनाउणी है अज ही कॉल करो प्रभदीप सिंह 416-710-7524 416-710-7524 ते प्रभदीप सिंह होरां नूं कॉल करो
2: Solution to promote your business. Desh Pardesh Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang 24 Ghante Satto Din. Hun tak Desh Pardesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vadha karan waste Desh Pardesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551
1: ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
3: ਹਾਂਜੀ 0577 ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
4: जी मैं सदीक बात कर रहा हूँ
3: जी हाँ जी ऑल डेट सॉल्यूशन तो सदीक जी सारे लाइन से जुड़े ने जो थोड़े भी कोई कर्जा चढ़िया होया तो कोई तो अपने क्रेडिट कार्ड ही भरी बैठे हो पे ऑफ नहीं हो रही तो थोड़ी पूरी हेल्प करेंगे जरूर तुसी गलबात कर सकते हो मोहम्मद सिद्दीकी जी के नाल हाँ जी सर अपना मैसेज दो प्लीज
4: जी बिल्कुल अगर किसी नु भी किसी किस्म का कोई कर्जे का इशू हैगा चाहे वह पर्सनल कर्जे हैगे ने बिजनेस के कर्जे हैगे ने चाहे वह छोटे कर्जे ने या कर्जे ज्यादा हैगे ने मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों वास्ते हैगा जो मिनिमम पेमेंट कर रहे ने या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड तो पे कर रहे ने अपना पैसा इंटरेस्ट जाया ना करो कई ऑप्शन अवेलेबल हैगे ने तुहाडे वास्ते कॉल करके चाहे फोन ते इनफॉर्मेशन ले लो या मेरी किसी भी लोकेशन ते आके मैनूं मिल सकदे हो सलाह मशवरे की कोई फीस नहीं हैगी नंबर है साडा 416-671-0577 ते कॉल कर सकदे हो कर्जा चाहे तुहाडे ते क्रेडिट कार्ड दा हैगा लाइन ऑफ क्रेडिट ने पर्सनल लोन्स ने पेडे लोन्स ने या फिर इनकम टैक्स दा मामला है सीआरए दे नाल पर्सनल या बिजनेस दा जीएसटी आउटस्टैंडिंग है पेरोल आउटस्टैंडिंग है पे सबसिडी आउटस्टैंडिंग है या कोई कार ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस कीते सी पेमेंट नहीं कर सके चुके लै गए ने या पेमेंट नहीं कर सकते वापस करना चाहते हो तो यह सारे कर्जे तुहाडे सैटल हो सकते ने असीं तुहाडी हेल्प करते हैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम रिलीफ मिल सकता है क्लेम दिलवाइए और बाकी छोटी छोटी किस्त में बगैर इंटरेस्ट दे जो कर्जा मंथली पेमेंट इजली अफोर्ड कर सकन वो पे करन और अगर थोड़ा जी क्रेडिट खराब होता या आली खराब हो चुका तो कोई बड़ी गल नहीं हैगी क्रेडिट नू दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता असी अपने क्लाइंट नू एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम और बहुत जल्द तुम क्रेडिट भी वापस तुम मिल सकता तुम 6-7 साल वास्ते वेट नहीं करना पेगा और एक चीज मैं गरंटी कर दा कि अगर थोड़ा केस मैं रिव्यू करने के बाद लवांगा तो मेरे ऑफिस चो तुहानू कदे भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा जो वादा करांगा पहली मीटिंग उसके मुताबिक थोड़ा केस अप्रूव होएगा और जो अगर क्रेडिट खराब होना तो बहुत जल्द थोड़ा क्रेडिट भी वापस तुहानू मिल सकेगा असीं थोड़ी पूरी पूरी हेल्प करांगे नंबर 416-671-0577-416 671-0577 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਕਾਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਰਹਮ ਐਨਾਲਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿਪਲਿੰਗ ਰੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਦੀਪ ਬੁਵੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ 416-671-0577-416-671-0577 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ
1: ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੋਰਗੇਜ ਕਿੰਗ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜੀ ਝੜੀ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ 50,000 ਬਾਹਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ 416-804-2015 ਪਰਮਜੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-804-2015
5: ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈਸ ਜੰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਨਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈਂਸ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀ ਵੀ ਐੱਲ ਜੀ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ।
3: ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।

कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू ए कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट ब्रिज मोहन.com।